0: Mirchi. It's hot.
1: थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते

0: Mitchie. It's hot.
1: दिन तो ले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा

मेरे हिसाब से ना द बेस्ट रिलेशनशिप्स आर दोज जिसमें एक कपल वर्कशॉप करते हैं, यू नो, कि आदमी वर्क करता है और लड़की शॉप करती है. दैट काइंड ऑफ वर्कशॉप रिलेशनशिप इज सुपर सक्सेसफुल. आई एम जस्ट किडिंग. बट आज मैंने सोचा कि आपसे पूछती हूँ कि इफ यू हैव एवर बीन इन अ रिलेशनशिप, आपके हिसाब से व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स अ रिलेशनशिप रियली वर्क. मेरे हिसाब से इट्स ग्रेट कम्युनिकेशन. छोटी सी मिसकम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग जस्ट गोज डाउन हिल. आई रिमेम्बर वेरी रिसेंटली मेरी बेस्टी के साथ ऐसे हुआ. शी वेंट विद हर बॉयफ्रेंड टू गोवा और उन दोनों की एक बहुत अच्छी कॉमन फ्रेंड थी. तो अब बॉयफ्रेंड डिसाइडेड टू गो स्विमिंग विद द अच्छी कॉमन फ्रेंड एंड माई बेस्टी वॉज लाइक कि नहीं यार मैं पीछे रुक कर किताब पढ़ती हूँ. एंड द बॉयफ्रेंड सेड कि हाँ ठीक है, ओके ओके ओके. ना सोचो एक छोटी सी चीज, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस. बॉयफ्रेंड सोच रहा है कि मैं इसे वो करने दे रहा हूँ जो ये करना चाहती है, जबरदस्ती स्विमिंग नहीं लेके जा रहा. और मेरी बेस्टी को लग रहा है कि भाई ये अकेले स्विमिंग चला गया इसके साथ, आई होप दे बोथ ड्राउन एंड डाई. सो नाउ यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, राइट? तो आपके हिसाब से व्हाट इज इट दैट मेक्स अ रिलेशनशिप टिक? टेल मी ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: पहले ही बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
1: रोशी के डीएम से
0: सानिया ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्विस्टेड मैसेज लिखकर भेजा एंड शी सेड मुझे इसका आंसर आप खुद ही बता दो, आई कांट टॉक अबाउट इट, आई स्टार्ट क्राइंग। द थिंग इज सानिया को एक बंदा मिला एंड दे बोथ हैव बीन डेटिंग फॉर 6 मंथ्स, लेकिन वो जानती है कि अगले 2 महीने के बाद वो बंदा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। सानिया दिल्ली में खुश है अपनी नौकरी में, शी डजंट वांट टू रिलोकेट टू ऑस्ट्रेलिया। वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं ट्राई करना चाहते हैं बिकॉज शी इज़ लाइक, हम दोनों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्राई कर लिया है अपनी ज़िंदगी में पहले एंड वी नो दैट इट डजंट वर्क आउट। सो हमारा रिलेशनशिप एक जेन्युइन एक्सपायरेशन डेट के साथ आता है, शी सेड, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती है। द प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे हमारा एक्सपायरी डेट पास आते जा रहा है वैसे वैसे आई फाइंड दैट आई एम फीलिंग सैडर एंड सैडर, एंड यूजुअली बिकॉज मुझे पता है कि वो जाने वाला है, व्हेन वी आर आउट ऑन अ डेट इवन देन आई एम फीलिंग काइंड ऑफ सैड। तो क्या करूं, 2 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लूं ताकि मुझे इससे बड़ा हार्ट ब्रेक ना हो, या मैं इस रिलेशनशिप में और 2 महीने रुक जाऊं सो दैट आई कैन एंजॉय व्हाट आई एम ऑलरेडी एंजॉयिंग विद दिस गाय। यू नो व्हाट बेब, है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपकी, बट द ट्रूथ इज कि छोटा हार्ट ब्रेक और बड़ा हार्ट ब्रेक कुछ नहीं होता। जब आपका दिल किसी के साथ इन्वॉल्व होता है और वो रिलेशनशिप किसी भी पॉइंट पर ख़त्म होता है, यू डू एंड अप ब्रेकिंग योर हार्ट। और क्योंकि आपने पिछले 6 महीने में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सर्टन रिलेशनशिप बना लिया है, वो आप आज ख़त्म करो या 6 महीने के बाद ख़त्म करो या 2 साल के बाद, इट इज़ स्टिल गोइंग टू हर्ट यू द सेम वे। मैं ये भी जानती हूँ दैट टू से कि लिव इन द मोमेंट, इन्जॉय कर लो अगले 2 महीने विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑनेस्टली टू आंसर योर क्वेश्चन, देर इज़ नो आंसर टू योर क्वेश्चन। आप जिस सिचुएशन में हो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू गाइज हैव बीन कॉन्शियस अबाउट चूजिंग दिस फॉर योर सेल्व। आपने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए जब तक इकट्ठे हैं तब तक इकट्ठे हैं। वंस ही डज लीव, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हार्ट ब्रेक और वैक्यूम होगा, दैट इज़ ट्रू, बट ट्राई एंड मेक एज मैनी मेमोरीज एज यू कैन। एंड हु नोज, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जाकर ही माइट ऑल्सो रियलाइज कि हम शायद इमेच्योर थे इन थिंकिंग दैट हर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है। मे बी यू गाइज विल चेंज योर माइंड अबाउट इट, बट टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ स्मॉल वे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी ब्रेकअप कर दिया तो आपको तकलीफ कम होगी, तकलीफ आपको तब भी होगी। तो माई सजेशन इज वाइल यू टू आर टुगेदर मेक द मोस्ट ऑफ इट, और उसके बाद अगर आपको एक ब्रोशी की ज़रूरत हुई, मैं हूँ ना आपके साथ एंड आई प्रॉमिस टू नेवर लीव यू नो मैटर वेयर इन द वर्ल्ड आई एम। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot.

0: जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोके।

0: पावला सा रंग तेरा, पावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: कन्हैया लाल की।

0: on my channel.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड डिसाइड करता है कि इस हफ्ते कौन सी कहानी ट्रेंड करेगी, कौन सा हीरो मास्क लगेगा, कौन सा ट्रेलर इंटरनेट तोड़ देगा एंड कौन सा गाना शादियों में बजेगा। लेकिन असली सवाल हमेशा सेम रहता है, इस शोर में क्या टिकने वाला है? क्योंकि हाइप तो बहुत चीजों की बन जाती है लेकिन लेगेसी बहुत ही कम की होती है। एंड इस वक्त हिंदी सिनेमा एक अजीब से फेज में है। सुपरस्टार्स अब भी बड़े हैं लेकिन ऑडियंस उनसे भी बड़ी हो चुकी है। हम इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली ट्रोल करते हैं, इंस्टेंटली वर्शिप करते हैं। एक रील करियर बना देता है और एक फ्राइडे नैरेटिव बदल देता है। लेकिन फिर भी हर हफ्ते कुछ गाने ऐसे आते हैं जो शोर को काट देते हैं, कुछ फिल्म्स जो सिर्फ चलती नहीं कल्चर बन जाती हैं, एंड कुछ आवाजें जो प्रूव करती हैं कि बॉलीवुड अभी भी दिल से जिंदा है। तो चलो इस हफ्ते के बिगेस्ट सॉन्ग्स, बिगेस्ट स्टोरीज और बिगेस्ट बॉलीवुड पल्स को डीकोड करते हैं। दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड आई एम योर होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड गाड़ी शुरू होती है विद द मोस्ट डोमिनेंट फिल्म एंड उसका ये डोमिनेंट टाइटल ट्रैक आपने सुना है, बहुत बार सुना है।
3: नंबर 20।

बॉलीवुड में अगर किसी कंपोजर ने हमें ये सिखाया है कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं फील किया जाता है, then it has to be A.R. रहमान। लेकिन रहमान साहब का म्यूजिक आजकल पहले जैसा इंस्टेंट हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करता, और शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डिजाइन है। क्योंकि रहमान साहब के गाने फास्ट फूड की तरह, बर्गर्स पिज्जाज की तरह बिल्कुल नहीं होते। दे आर लाइक स्लो पॉइजन। पहली बार सुनो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, दूसरी बार सुनो तो इंट्रीगिंग लगते हैं, और फिर एक दिन अचानक गाना आपके अंदर घर बना लेता है। रहमान साहब मेलोडी को स्पून फीड नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। टेक्सचर, साइलेंसेस, ट्रेन साउंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिंग, और इसीलिए उनके गाने वायरल कम होते हैं, डिस्कवर ज्यादा किए जाते हैं।

0: इनिशियली लोग बोल रहे थे ये तो बहुत डीप है, आज ये एक इमोशनल एंथम बन गया है। और अब मस्कारा को देखो फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, रहमान साहब, इरशाद कामिल, ये कोई लाउड चार्ट बस्टर नहीं है, ये वो टाइप का गाना है जो शायद 3 महीने बाद सडनली आपको हिट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग म्यूजिक ट्रेंड यही होने वाला है, द स्लो बर्न एल्बम्स, एल्बम्स जो पहले ग्रो करती हैं और फिर एक्सप्लोर करती हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद चांद मेरा दिल। पहले लोग बोल रहे थे यार अच्छी एल्बम है, अब हर हफ्ते एक नया गाना इमर्ज हो रहा है और इस वक्त द लेटेस्ट वन इज मेकिंग सीरियस नॉइज। फ्रॉम चांद मेरा दिल, कंपोज बाय सचिन जिगर, राघव चैतन्य और जुनीता गांधी की आवाज में, दिस इज खासियत, डेब्यूइंग ऑन नंबर 18।
1: Number 18.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 14

0: बॉलीवुड का मूड कितनी जल्दी स्विच होता है। अभी जो गाना आपने सुना प्रेम की लीला फिल्म कृष्ण अवतारम, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, ओल्ड स्कूल डिवोशन, नो ईडीएम ड्रॉप्स, ना कोई फोर्स्ड कूलनेस, बस सुर हैं, भाव हैं और सिंसियरिटी है। एंड देखो, ऑडियंस ने उसे सीधा दिल में जगह दे दी। डेब्यू किया इस गाने ने नंबर 14 पर, और शायद इसीलिए म्यूजिक का साइंस अब पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कब क्या कनेक्ट कर जाए नोबडी नोज एनीमोर। और इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था कॉकटेल का वो गाना जब तलक। यार जरा सोचो, अरिजीत सिंह, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य, एंड देन यू गॉट शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन। ये लाइनअप देख के तो लगता है कि गाना चार्ट पे आएगा नहीं, सीधा कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गाना आया तो सही, लेकिन इम्पैक्ट नहीं बना। इनफैक्ट टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाया और क्वाइटली इस काउंटडाउन से एग्जिट मार चुका है। और शॉक इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि शाहिद और प्रीतम दा का म्यूजिकल पार्टनरशिप तो हिस्टोरिकली लीथल रहा है।
1: साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
0: ये वो कॉम्बो है जो फुल मैडनेस को भी एक म्यूजिकल इवेंट बना देता था। इसके बाद जरा सा मूड स्विच कर लो।

0: हार्ट का पानी।
1: एंड सडनली वो सेम डुओ हार्टब्रेक को इतना सॉफ्ट बना देता है कि आदमी खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सॉन्ग।
2: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही।
1: बस यार ये गाना तो कल्चरली इमॉर्टल है। ऐसे गाने रिलीज नहीं होते, अडॉप्ट किए जाते हैं। इसलिए जब तलक का इतनी जल्दी फेड हो जाना जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था एंड मेरे लिए काफी शॉकिंग भी। लेकिन फ्रीदंदा का गेम खत्म समझना गलती होगी। भूत बंगला का राम जी आके भला करेंगे नंबर 13 पर पहुंचा इस हफ्ते। लेकिन कॉकटेल का जो अपकमिंग गाना है माशूका, वो मैंने सुना है एंड दैट वन साउंड्स फार मोर डेंजरस। लेकिन अभी फ्रॉम एन ईरा व्हेन शाहिद कपूर एंड प्रीतम दा सिंपली कुड नॉट मिस, ये वाला गाना है फ्रॉम मौसम जिसे गाया है शाहिद माल्या ने, रब्बा मैं तो मर गया ओए। माय पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेकओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन्स स्क्रिप्ट्स का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज हजार करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये भडिंडा की।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 3
3: वाह

रूही दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइम नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशन थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 ऐप्स, 4 पासवर्ड, 5 सब्सक्रिप्शंस और 15-20 एड से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but शरारत बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो, शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉप 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका और अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। सम स्पेशल सरप्राइजेस, ऑल दिस एंड मोर, तो सीधे शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। मिका सिंह दहिया द रैपर का गाना, गाने का नाम है छोरी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकर छोरीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से ये गाना दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। छोरी ऑन नंबर 10, ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Gaana number 9 par humne Aditya Rikhari and Kutle Khan ko ek gaane mein suna. Aditya Rikhari, who is the pop sensation? Kutle Khan, Rajasthan ke folk music ko represent karte hain. Ye do itne alag duniya ke artist, sirf Coke Studio hi ek gaane mein la sakta hai. Countdown ka jo agle wala gaana hai, wo ek nai entry hai. And this is a debut jo hum bahut time se wait kar रहे थे, because Adnan Sami is back with a new song. Adnan Sami के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो powerful romantic ballads याद आते हैं।

बट जो उनका नया वाला गाना है, इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन, रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में, जहाँ थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है, इट फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशंस, older women, small town characters. You will see someone you know in this music video. But the best part is how Adnan Sami is fully playing a character in the video. Expressive styling, very transformed look. Unke surme pe dhyan dena. But gaana unhone bahut fun banaya hai. Aur bahut waqt ke baad hum ek aisa high peppy pop gaana sun rahe hain from Adnan Sami. Apne radio sets ki volume bada lijiye. Naya Naveela gaana debut kar raha hai seedha on gaana number 8. Adnan Sami ki composition. Adnan सामी की आवाज में, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: number six. Six, six, six.
1: तेरे आगे पीछे लाके सुन तोरा छोरी का हर रंग।

0: मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का countdown हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika on Instagram। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। There are some artists जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshamya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Wahi larger than life energy hai. Kafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect आपको सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इन फैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला, बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रैस्प कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना सुना तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

हिमेश रेशमिया की आवाज में दैट वाज शराब ऑन आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट। अश्काई और मैं बेट कर रहे हैं दैट ये गाना कब डेब्यू करेगा, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। मेरे को लगता है कि ये गाना नंबर 5 से 7 के बीच में डेब्यू करेगा। व्हाट डू यू थिंक? If you want to predict at RJ Kanika par aake mujhe batao. Now back to the countdown, agle wale gaane ki bari. Diljit Dosanjh Sia ka gaana, gaane ka naam hai Ranjha. Pichle hafte se apni position par barkarar, Ranjha is playing right next for you on Gaana number 5. You are listening to Gaana Indie Top 10, bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 5.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

0: करण औजला एकी का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली जेन्युइनली आई स्वेयर प्रॉमिस आई बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर मैं 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने आपके साथ शेयर करती हूँ। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है तेरा चेहरा बाय द वन एंड ओनली अदनान सामी। ये गाना साल 2002 में रिलीज हुआ था, अदनान सामी की एल्बम तेरा चेहरा का ही पार्ट है। म्यूजिक खुद अदनान ने कंपोज किया था, लिरिक्स समीर के हैं एंड इस गाने की वीडियो में है रानी मुखर्जी। उस साल की सबसे सक्सेसफुल पॉप एल्बम्स में से एक थी तेरा चेहरा। आई रिमेम्बर इस एल्बम के थ्रू ही हम अदनान सामी की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कुछ इतनी मैसिव कोलैबोरेशंस थे इस एल्बम में विद रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। बट जो ये गाने हमें आज याद हैं, ना ही ये कोलैबोरेशंस की वजह से हैं, ना ही उन गाने म्यूजिक वीडियोस की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। गाना नहीं भाई, अदनान सामी पूरा माहौल बनाते थे। उनका हर गाना एक मिनी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। पियानो, स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गिंग इन हिज वॉइस, ऐसा लगता है कि बस गाना आपके लिए गा रहे हैं। स्पेशली द सॉन्ग तेरा चेहरा, द लिरिक्स, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, इतना ड्रामा, उफ। एंड अदनान सामी की वॉइस जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, चीजी एंड हाउ। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अदनान सामी एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, साल 2002 का गाना अदनान सामी की आवाज में, दिस इज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।

मैन ओ मैन, तेरा चेहरा इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि एक पूरा जमाना याद आ जाता है. अदनान सामी की आवाज में दैट वॉज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड दिस इज वेयर गाने शेयर करने की बारी आती है. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, हमसे आके शेयर करो. एट आरजे कनिका पर अपना रिकमेंडेशन दो. अशकाय मेरा साउंड प्रोड्यूसर और मैं, हम बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके रिकमेंडेशंस के. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 3. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है अर्ज किया है. अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। नाउ गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर आई टेक यू टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। इस हफ्ते गाना नंबर 10 पर था मीका और दया द रैपर का छोरी। देन आदित्य रेखारी रैवट और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे डेब्यू किया अदनान सामी के गाने लिपस्टिक ने। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 7। जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबीना। देन मिट्टा रौर का शीशा ऑन गाना नंबर 6। तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर। दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 5। करण औजला 21-25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। संजू राठौर का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 3। फिर हमने सुना अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
2: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
1: It's time for the numero uno song of the week, yani is hafte ka gana number 1. This song is absolute treat. What a beautiful mix in this countdown. Gaane ka naam hai Bairan, ek Haryanvi song jo mujhe pata hai ki aapke Instagram ke har teesre scroll mein aap ye gana sun rahe hain. Banjare ki composition, unhi ke lyrics, unhi ki awaaz. Bairan is playing right next for you on gana number 1. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 1.

Mirchi. It's hot.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।

आया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

Hey there, my beautiful people. Good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स और लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, जो कि तुम्हारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के आंटीज या अंकल्स भी तुम्हें नहीं दे सकते. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारी मॉर्निंग फील होती है थोड़ी सी कन्फ्यूज या फिर जैसे GPS लगाकर भी भटक रहे हो, तो तुम परफेक्ट जगह पर आए हो, बिकॉज यू आर चिलिंग विथ मी ऑन मिर्ची, जहां पर हम ढेर सारी बातें करते हैं ओवर चाय, ब्रेकफास्ट, कॉफी एंड ढेर सारी गपशप करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें जानते हैं. मैं तुम्हें अप टू डेट रखती हूँ और साथ साथ में तुम्हें मिर्चीदार बैंगर्स भी सुनाती हूँ. इससे अच्छी शुरुआत मॉर्निंग की और क्या हो सकती है. तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर चिपक कर बैठो, जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर और एक्स पर फॉलो भी कर लो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

मॉर्निंग में दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला। सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब हम चलने वाले हैं थोड़ी सी जर्नी पर। जर्नी बोले तो टाइम ट्रैवलिंग की होगी। हम सालों पहले पता करेंगे आज के दिन क्या हुआ था। सबसे पहले 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू ऑटोमन सल्तन मेहमद द सेकेंड, बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट पावर शिफ्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। देन 1660 में किंग चार्ल्स द सेकेंड marched back to London and said, "Surprise, मैं वापस आ गया हूँ." Fast forward to 1953, absolute goosebumps moment. Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay became the first humans to conquer Mount Everest. 1968 में India's wrestling legend Dara Singh Ji won the World Wrestling Championship in Mumbai. And this happened way back WWE became cool in India. Then 1972 में the Dalit Panthers were founded in Mumbai, raising their voices against caste discrimination and inequality. And 1999 में Space Shuttle Discovery docked with the International Space Station for the very first time. Also, आज का दिन है the International Day of UN Peacekeepers. Big love and respect to people serving worldwide. और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे याद दिला दो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चालू है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसला के साथ। आने वाले हैं मिर्ची दार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: स्टॉप स्क्रॉलिंग फॉर 2 seconds एंड लिसन टू दिस. मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए बॉलीवुड का टी.
1: मिर्ची वॉच इट.
0: फिल्ममेकर करण जौहर इज ऑफिशियली अनफॉलोड बेसिकली everybody from Bollywood celebrities on Instagram. Yes, even SRK, Kajol, Alia Bhatt, Kareena Kapoor, everyone. Lekin plot twist ye hai, he still follows PC. Bole to Priyanka Chopra. Haan ji. Sirf aur sirf Priyanka ne survive kiya hai is unfollow ki tsunami mein. Honestly, mujhe lagta hai mere relatives ko bhi main itna aggressively filter nahi karti hu jitna ki करण जौहर ने कर दिया. नाउ ऑब्वियसली द इंटरनेट बिकेम ACP प्रद्युमन फ्रॉम CID ओवरनाइट और पूछा, दया कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ऐसा क्या हो गया है. लेकिन करण जौहर ने क्लियर किया है द एयर फूफू करते हुए और कहा है, रिलैक्स, इट्स जस्ट अ डिजिटल डिटॉक्स. ही सेड ही इज अनफॉलोइंग एवरीवन टू रिड्यूस टाइम एंड एनर्जी स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम. एंड ऑनेस्टली ये काम मुझे भी करना है, लेकिन मुझसे कोई पूछने नहीं वाला कि तुमने क्यों किया है. anyway, तुम पूछ सकते हो, जाकर तुम मुझे फॉलो जरूर कर सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चिपक के बैठो, यहीं पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज का मौसम बिल्कुल तुम्हारे एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, हमारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम पता करेंगे बाहर के मौसम का हालचाल। अंदर का मौसम तो मिर्चीदार ही है। राइट नाउ इट्स अराउंड 53 डिग्रीज फारेनहाइट एंड आउटसाइड स्काई इज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बिकॉज ऑफ द विंड इट्स फीलिंग क्लोजर टू 49 डिग्रीज फारेनहाइट। गुड न्यूज ये है कि आज बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरने वाली है, जस्ट लाइक लास्ट 24 आवर्स। अगले 24 आवर्स में भी जीरो रेन एक्सपेक्टेड है। तो आज के दिन अपने बालों को जिस तरह की मर्जी बनाना चाहो बनाकर बाहर जा सकते हो, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। नाउ द टेम्परेचर्स टूडे आर रेंजिंग फ्रॉम 52 डिग्रीज फारेनहाइट टू 77 डिग्रीज फारेनहाइट। तो सुबह सुबह यू विल लीव होम ड्रेस लाइक हुडी की तुम्हें जरूरत है, आफ्टरनून आते आते तुम्हें लगेगा यू लैंडेड इन मायामी, एंड इवनिंग आते आते तुम्हें फिर से गजल और शॉल की जरूरत पड़ने वाली है। एंड द फनी पार्ट टुडे इज कि आज का हाई इज एग्जैक्टली यस्टरडेज हाई, यानी कि 77 अगेन। कल भी इतना ही तापमान था। तो अब अगर बाहर जा रहे हो तो एक लाइट जैकेट कैरी करना, अम्ब्रेला कैरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन याद से SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना, और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बिल्कुल मत भूलना, और मिर्ची ऑन रखना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो। फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ऑन।

गुड मॉर्निंग माय मिर्ची पीपल, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में और सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग। अब बारी आ चुकी है सबसे पहले एक वायरल वीडियो शोज इंडियन टूरिस्ट डूइंग गरबा नियर एन एयरक्राफ्ट ऑन द वियतनाम एयरपोर्ट टॉमैक। हाँ जी, रनवे पर रास गरबा। नाउ द इंटरनेट इज डिवाइडेड, सम पीपल कॉल्ड इट जॉयफुल एंड फन व्हाइल अदर्स सेड गाइस टाइम एंड प्लेस भी कोई चीज होती है, एंड ऑनेस्टली फेयर पॉइंट। नंबर टू पर Bollywood boys are having a group project meeting. Reports say Salman Khan personally called Ranveer Singh and Farhan Akhtar to sort out the Don 3 situation after rumors around Ranveer's exit. Salman apparently told them creative differences happen all the time. Basically, Salman Khan is playing Modi ji. And number three per cricket fans ke liye. 15-year-old RR opener Vaibhav Suryavanshi reacted after Sachin Tendulkar praised his explosive 97 off just 29 balls in IPL Eliminator. Vaibhav said hearing praises from the god of cricket felt like a huge matter of pride. And honestly, at 15, I was struggling to open math textbook. And this kid is opening bowling attacks. Incredible. Hashtag salute. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Connect with me Insta or X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647224. Stay tuned and stay hot.

0: जी,
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: यार 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी पकड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिका दिक्कड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो

गुड मॉर्निंग माय गॉर्जियस पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर बर्थडे सेलिब्रेशन। वी आर गोइंग टू बी लाउड, लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू May 29 के बेबीज। आज का दिन इज क्लियरली एलीट बिकॉज यू शेयर योर बर्थडे विद सम रियली आइकॉनिक पीपल लाइक फॉर्मर US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, एंड देन देयर इज किंग चार्ल्स द सेकंड फ्रॉम इंग्लैंड। And adventure lovers, legendary mountaineer Tenzing Norgay was also born today. The man helped conquer Mount Everest. And aaj ke din agar tum New York ka subway survive kar lo, to it's almost the same, right? And then we have musician Noel Gallagher, Mel B from the Spice Girls, and genius film composer Danny Elfman. And then we have actors Annette Bening and Laverne Cox, along with NBA superstar Carmelo Anthony, athletes, artists, leaders, सब कोई है आज के दिन। तो आज के दिन अगर तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे, there is a higher chance you're dramatic, talented and occasionally a little bit impossible. So अगर आज के दिन तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, प्लीज वॉक विद द कॉन्फिडेंस ऑफ अ स्टार। आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं होती, केक खाओ, ऐश करो, मजे करो और अपना बर्थडे खुल के सेलिब्रेट करो। और अगर मैं बर्थडे शाउट आउट मुझे भेजना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: कर रहे हैं और पिछले साल आज ही के दिन अराउंड $3,300 गोल्ड ट्रेड कर रहा था। एप्रिसिएशन आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स के साथ कनेक्ट करें। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल कलरलेस डायमंड प्लैटिनम की रिंग में सेट, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज अप्रूव होने पे राज ज्वेल्स की फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें ज्वेलरी आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके घर लेके जाए और 9 किश्तों में पैसे दे बिना किसी इंटरेस्ट के। कैसे, आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स की टीम के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

0: हेलो हेलो, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। और अगर गोल्ड या सिल्वर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो राइट टाइम पर ट्यून इन किया है, बिकॉज वी गॉट गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,530 $4,530 पर ट्रेन के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

ऑलराइट, गुड मॉर्निंग माय लवलीज। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो टाइम जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे पहले स्पेस न्यूज। समथिंग जस्ट वेंट बूम। लिटरली जेफ बेजोस ओन्ड ब्लू ओरिजिन्स न्यू ग्लेन रॉकेट एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग अ टेस्ट इन फ्लोरिडास केप कैनावरल, क्रिएटिंग अ जायंट मशरूम क्लाउड विजिबल फ्रॉम ओवर 74 किलोमीटर्स अवे। इवन इलॉन मस्क रिएक्टेड सेइंग मोस्ट अनफॉर्चुनेट, रॉकेट्स आर हार्ड। एंड ऑनेस्टली दैट्स प्रोबेबली द कामेस्ट बिलियनेयर रिस्पॉन्स एवर टू समथिंग एक्सप्लोडिंग सो ड्रामेटिकली। And number two per the internet is remembering Harambe, the gorilla who died in 2016 after a child fell into his enclosure at a US zoo. On the 10th anniversary, the White House shared a tribute calling him bigger than a meme. And wow, only the internet can turn a gorilla into both emotional history and pop culture legend at the same time. And number three per Marvel fans, hold your spider webs tight. Tom Holland hinted that he may eventually step away from playing Spider-Man. He said he hopes to guide the next generation the way Robert Downey Jr. helped him, which honestly sounds pretty sweet. But also, sir, some of us are emotionally attached to the version of Spider-Man, okay? And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Sunte raho mujhe aur saath mein follow bhi kar lo. Mirchi Pris is my handle name. MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग माय पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो पार्ट जहाँ पर हम सितारों की बातें करते हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: It is यानी मेष राशि। Something from the past suddenly makes you realize you've been stressing for no reason। मतलब फुल इतना टेंशन क्यों लिया मोमेंट होने वाला है तुम्हारे साथ। लकी कलर इज टैंजरीन ऑरेंज, लकी नंबर इज 11। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। अ लिटिल सीक्रेट में एक्सीडेंटली बिकम पब्लिक टुडे, बट रिलैक्स, नोबडी इज जजिंग यू। ऑनेस्टली देसी फैमिलीज हैव सफर्ड वर्स थिंग्स देन ऑकवर्ड गॉसिप्स। लकी कलर इज पिस्टाशियो ग्रीन, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, अ सिचुएशन यू've बीन अवॉइडिंग इज फाइनली डिमांडिंग अटेंशन। फेस इट ब्रेवली बिकॉज वंस यू हैंडल इट, मेंटल पीस इनकमिंग, लाइक डिलीटिंग 8,000 अनरेड ईमेल्स। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, यू've बीन डूइंग टू मच फॉर एवरीवन एल्स लेटली। आज थोड़ा सा खुद पर भी अटेंशन दे दो, ओके? यू आर नॉट अ 24 आवर कस्टमर सर्विस हॉटलाइन। लकी कलर इज ऑफ वाइट, लकी नंबर इज 18। लियो यानी कि सिंह राशि, फन वाइब्स आर स्ट्रॉन्ग टुडे, बट डोंट इग्नोर वन सीरियस इशू वेटिंग इन द कॉर्नर, लाइक लेफ्ट ओवर गिल्ट फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग। हैंडल इट एंड देन पार्टे। लकी कलर इज गोल्ड डस्ट, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, स्टॉप डूम स्क्रोलिंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स फॉर 1 सेकेंड एंड फोकस ऑन व्हाट जेन्युइनली एक्साइट्स यू। प्रोटेक्ट योर पीस टुडे लाइक देसी इज प्रोटेक्ट टपरवेयर डब्बास। लकी कलर इज लैवेंडर ग्रे, लकी नंबर इज 29। एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर भी हम साथ में हो सकते हैं, फॉलो मी देयर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मिर्ची फैमिली, दिस इज प्रिसिला विद यू, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब मेरे जाने का टाइम हो गया, बट नॉट बिफोर वन लास्ट स्टोरी। सो हियर्स टुडेज मेन कैरेक्टर रिवेंज एनर्जी न्यूज। एक यूएस पिज्जा रोबोटिक स्टार्टअप कॉल्ड पिकनिक वर्क्स, विच रेज्ड अ मैसिव $53 million टू ऑटोमेट पिज्जा मेकिंग, हैज ऑफिशियली शट डाउन। आउट। Imagine this. Restaurant owner Lee Kindle had already invested big money into these pizza robots, only to be left with what he hilariously called a robot aquarium. Ha ha. Basically, expensive machines sitting right there, doing absolutely nothing. Pretty much like politicians. And the total value was around $250,000 worth of unused pizza robots, just chilling there collecting dust and disappointment. But here's the twist. Instead of crying over cold pepperoni dreams, the man got so frustrated he started his own robot company. Honestly, that is the most entrepreneur thing ever. And somewhere out there, koi unemployed pizza robot is probably wondering, kya main apply karu job ke liye? Moral of the story ye hai ki sometimes life gives you lemons. And sometimes life gives you broken pizza robots with crores. Either way, make something out of it. Preferably garlic bread. And on that garlicky note, मैं बोले तो प्रिसिला तुमसे टाटा बाय बाय बोलती हूँ आज के लिए। मिलूंगी तुम्हें वीकेंड खत्म हो जाने के बाद, यानी कि मंडे को। तब तक तुम अपना वीकेंड एंजॉय करो, बी गुड, हैव फन, खाओ पियो, ऐश करो, और साथ साथ में मुझे फॉलो भी करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। And अभी मिर्ची दार बैंगर्स के साथ तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: छछ छन्नी उस घर मंगनी, ऐसा करके हमारा एक गेम हुआ करता था। मुझे आज तक नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी हम बचपन में ये गेम खेला करते थे।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Now you tune in with me on Mirchi। और बचपन में वाकई में इस गेम का मतलब, जो नाम है उसका मतलब हमें नहीं पता था, लेकिन फिर भी हम ये गेम खेला करते थे। हमें रूल्स पता थे, बस हमें तो वही चाहिए था कि चार कोने हैं, चार कोनों के अंदर चार लोग उन कोनों को पकड़ के बैठ जाते हैं, एक डिनर होता है। डिनर जो है वो अपना एक क्यू बोलता है, उस टाइम पर हम लोगों को अपनी जगहें बदलनी होती हैं और उसी बीच में ताक झाक करते हुए डिनर को अपनी जगह पकड़ लेनी है और एक बंदा आउट ऑफ दोस फाइव पीपल उसको वो कॉर्नर नहीं मिलेगा और वो डिनर बन जाएगा। बस क्या लाइफ। जब आज हम देखते हैं और जांचते परखते हैं तो ऐसा समझ में आता है मुझे कि हम बिना किसी चीज को गूगल किए कंफर्म किए करते ही नहीं है। बचपन में न जाने कितने सारे ऐसे काम थे हमारे जो हम बिना सोचे समझे किसी ने कह दिया तो कर दिया, कहीं से सुन लिया तो कर दिया, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, इस तरीके के हुआ करते थे। और हमारे टाइम पर ही मम्मा कहा करती थी कि बेटा अजनबी अगर कुछ खाने के लिए दें तो लेना नहीं। आज के बच्चों को बताना नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आज के बच्चों से तो अजनबियों को खतरा है कि अगर कोई बच्चा कुछ दे दे तो लेना नहीं। जमाने बदल गए बाबू भैया, लेकिन हम वैसे के वैसे जो मिड डे मोहब्बत पर आते हैं और 90s के गियर में गाड़ी को डालकर कहते हैं यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गाड़ी अब आगे बढ़ाते हुए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक मेरे यारा, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: और डेली बेसिस हम तो कहते हैं क्या हो गया ना अब, लेकिन एक बड़ी मोहब्बत वाली फिल्म आई थी, क्यों हो गया ना
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And ये वो दौर था जब मैं भी विवेक ओबेरॉय की बड़ी फैन हुआ करती थी। And मैंने ये फिल्म सिर्फ इसी वजह से देखी थी क्योंकि मैं विवेक ओबेरॉय की फैन थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, इफ विवेक इज डेटिंग ऐश्वर्या राय तो मुझे ऐश्वर्या भी मंजूर है, विवेक की पसंद है ना यार। लेकिन आपको पता है कि ये जो फिल्म है इसका टाइटल क्यों हो गया ना प्यार रखने वाले थे, लेकिन फिर जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्हें लगा कि यार ये जो प्यार शब्द है ये बड़ा ओवरयूज्ड है यार हिंदी फिल्मों के अंदर, तो हम ये प्यार व्यार जो मामले हैं ये नहीं रखेंगे, सिर्फ क्यों हो गया ना ये रखेंगे ताकि गेस्ट वर्क जो है वो चालू रहेगा। एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज जब क्यों हो गया ना बोला जाता है तो किस चीज की बात हो रही है। लेकिन ना मैं ये जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जब वो ये कहते हैं कि प्यार इज अ वेरी ओवरयूज्ड वर्ड। आई वुड से कि ओवरयूज्ड है, लेकिन क्या करें, जीवन का सार ही प्यार है ना, अभी इंसान करेगा भी तो क्या करेगा। बट डिड यू नो कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए ना करते रहे, वो भी 10 बार तक, मतलब 10 बार उन्हें अप्रोच किया गया था इस फिल्म में एक रोल के लिए हाँ करने को, और वो ना पे ना बोलते गए। इवेंचुअली उन्होंने हाँ बोली, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, और उन्होंने जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है बोनी कपूर जी, उनसे कहा था कि वो इस फिल्म के लिए हाँ तभी बोलेंगे जब बोनी कपूर अपनी अगली फिल्म रन के लिए अभिषेक बच्चन को कास्ट करेंगे। एंड वी ऑल नो कि रन में तो अभिषेक बच्चन ही थे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: काजल अग्रवाल दी एक्ट्रेस, आज तो बड़ा नाम है यार, खूब शान है इनकी, खूब बातें होती हैं, खूब मीडिया इनको कवर करती है। बट आपको पता है, ये एक फिल्म में थी जो हमने बचपन में देखी है और जिसका टाइटल है क्यों हो गया ना। याद आया क्या?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और वेल, अगर आपको याद नहीं आया तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटू सा रोल किया था, एंड एट दैट टाइम शी वाज नॉट दी काजल अग्रवाल, शी वाज जस्ट एन एक्टर जिनका नाम था काजल अग्रवाल। और इस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय के फ्रेंड का रोल प्ले किया था, एंड ये वो टाइम था जब ऐश्वर्या राय एंड विवेक ओबरॉय का रिलेशनशिप जो था, दैट वॉज एन ओपन सीक्रेट टू द वर्ल्ड। सबको पता था कि ये रिलेशनशिप में है, लेकिन दोनों में से किसी ने तब तक तो एटलीस्ट हामी नहीं भरी थी। लेटर ऑन विवेक ओबरॉय वेंट ऑन बोर्ड, on a lot many interviews, shows, and he spoke about the relationship which eventually broke up. But anyways, at that time jo inka romantic relationship chal raha tha, uski wajah se ye kaha jata hai ki inki on screen chemistry bhi bahut achhi tarike se nikal kar aayi thi, aur isi ki wajah se inki film ki publicity ko bhi kafi aasani hui thi। दो, इस फिल्म को बनाने के लिए प्रोडक्शन चैलेंजेस काफी हो गए थे, बिकॉज इनिशियली ये जो फिल्म थी इट वाज सपोज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यूटीवी, लेकिन फिल्म के शुरू होने के 3 हफ्ते पहले ही यूटीवी बैकआउट कर गया, जिसपे विवेक ओबरॉय ने फिर सजेस्ट किया कि क्यों ना बोनी कपूर को अप्रोच किया जाए फॉर दिस फिल्म, सो दैट ही कैन प्रोड्यूस द फिल्म। एंड इवेंचुअली बोनी कपूर डिड प्रोड्यूस द फिल्म। वही कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, ऑन मिर्ची इट्स हॉट। I'm fine.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मुझे स्कूल जाना पसंद तो नहीं था, लेकिन दूरदर्शन का ये जिंगल एक अलग ही मोटिवेशन दे दिया करता था।
2: सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: याद है आपको वो मासूम सी आवाज, वो मुस्कुराते हुए बच्चे, वो किताबों से भरा बस्ता और आंखों में ख्वाब ही ख्वाब। डीडी नेशनल पर बजता था ये गाना। कोई बर्फीली वादियों से स्कूल जा रहा है, कोई रेगिस्तान के रास्तों से, पर मकसद एक ही था और वो था स्कूल जाना। कितना सुकून था यार उन दिनों में, है ना। एक टीवी जिंगल बोल रहा होता था कि स्कूल चले हम, और आज तो हम परेशान ही हो गए हैं, बिकॉज हर सोशल मीडिया चैनल अपने आप में ही स्कूल बन गया है और ज्ञान ही देता रहता है। पहले सब सिंपल था कि बेटा स्कूल जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे यही एड्स कमर्शियलाइज हो गए कि आओ बिजनेस स्कूल चले हम, आओ ट्यूशन क्लासेस चले हम, कॉम्पिटिशन की तैयारी करे हम। लेकिन इस गाने की बात तो कुछ और ही थी। अगर आज भी वो गाना कहीं बज जाता है ना, तो दिल बच्चा बन जाता है। बस्ता टांगे, जूतों पे पॉलिश लगाए, हम फिर से निकल पड़ते अपने ख्यालों में स्कूल की ओर, क्योंकि वो स्कूल नहीं था, हमारे ख्वाबों का पहला पड़ाव हुआ करता था। When was it last कि आपने ये जिंगल सुना था? मुझे DM करके बताओ on my Instagram handle which is Mirchi Sara and stay tuned with me Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

यार ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगी, नहीं नहीं नहीं नहीं किसी बंदे को नहीं यार, पानीपुरी को। हाँ, क्योंकि ये पानीपुरी का ही जादू होता है जो पता नहीं कैसे हमारे दिल पे छाने लग जाता है। और पता नहीं ये दीवाने पानीपुरी वाले भैया जो हैं वो क्या करते हैं पानीपुरी के साथ कि मीठा सा दर्द छाने लग जाता है। वो मीठा सा दर्द जो होता है ना, वो पानीपुरी के अंदर का जो पानी और मसाला होता है, उसकी मिठास, उसका तीखापन, उसका चटपटापन। हाय।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। मुंह में पानी लाते हुए अब यार गाने लाने की बारी आ चुकी है और अब बोलने की बारी आ चुकी है कि मान ना मान करो गानों की पहचान। और आज के वो दो गाने जो मैंने आपके लिए उठा के कोने में रखे हुए हैं कि यार जब मौका आएगा तो आपको सुनाऊंगी और फिर आप मुझे बताओगी कि ये दो धुने कौन से गानों की है, वो है ये।

ओकी डोकी। अब आपने एक काम करना है, सिंपल सा, डीएम करना है इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और मुझे बताना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम। फटाक से मुझे भेजो एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: इफ यू रिमेम्बर तो एक फिल्म आई थी सुष्मिता सेन, सलमान खान और दिया मिर्जा की। फिल्म का नाम था तुमको ना भूल पाएंगे। बड़ी क्यूट सी फिल्म थी। हालांकि फिल्म का कॉन्सेप्ट वॉज पुनर्जन्म, जो कि वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो सीरियल्स में और पुरानी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। और इस फिल्म में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना है, उस गाने का कॉन्सेप्ट भी कहीं से उठाया गया है।
2: मिर्ची, टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस फिल्म में एक बड़ा ही प्यारा सा गाना था, और वो गाना था ये
3: बेखुदी दीवानगी, तुम्हीं से हर मेरी जाने जाना।
1: Well, the point is कि this गाना, इसकी धुन has been copied from an English song जिसका कि नाम है Time After Time, which was sung by Cyndi Lauper, and the gana goes this way। And if you're wondering कि इस गाने को कंपोज किसने किया था, तो that was Sajid and Wajid। बड़े दिनों बाद कोई नई जोड़ी का नाम निकल के आया है इस कट कॉपी पेस्ट गैंग में। पर ना, you know the usual names जो फ्लोट करते रहते हैं। और अगर आपके पास भी 90s या early 2000 की ऐसी कोई मूवी या फिर कोई गाना है जिसके बारे में आपको पता लगा है कि ये कहीं से कट कॉपी एंड पेस्ट है, तो DM करो on my Instagram handle which is Mirchi Sara, and stay tuned to Mirchi, it's hot।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम लोग जसपिंदर नरूला द सिंगर के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनके गाने सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, और मैं तो उनको जब किसी गाने में देखा करती थी तो खोस ही जाया करती थी क्योंकि उनके लंबे काले घने बाल और ऊपर से उनकी आवाज का कमाल, ओए होए। लेकिन वेरी लेस डू वी नो अबाउट हर फादर सरदार केसर सिंह नरूला जी, जो कि खुद एक सिंगर थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And yes, जसपिंदर नरूला के फादर सरदार केसर सिंह नरूला जी, he was a singer and a very good singer। और जसपिंदर नरूला को जो ये गिफ्ट ऑफ वॉइस मिला है वो अपने फादर से ही मिला है, उन्होंने ही इन्हें ट्रेन किया है। लेकिन there was this one day in his life जब उनकी आवाज all of a sudden चली गई और उसके बाद वो गा ही नहीं पाए। Well, जसपिंदर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि ये उनके साथ तब हुआ जब उनके एक शागिर्द ने उन्हें कुछ खाने के लिए लाकर दिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप इसे खाइए, क्योंकि उनकी तबीयत या आवाज में कुछ तो नासाजी थी, कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप ये खाइए और अगले दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक होना तो दूर की बात, उनकी जो आवाज थी वो तो ऐसी गई कि कभी वो वापस से उस तरीके से गाना गा ही नहीं पाए जिस तरीके से वो पहले गा चुके थे और उनकी आवाज में इतने गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। एंड यस, ये दुनिया इज अ मिक्स बैग ऑफ पीपल जहाँ पर अच्छे लोग तो है ही है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की अच्छाई या दूसरों का अच्छा होना कभी पसंद नहीं आता, तो वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा जाती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर कॉर्डलेस फोन,
2: यादों को चिट्ठी।
1: भाई तुम फोन तो बिल्कुल नहीं थे हमारे लिए, तुम तो कोई जादुई सी चीज थे जो एक दिन अचानक हमारे घर में चले आए और फिर वो जो तार वाला फोन हुआ करता था वो गायब हो गया और कॉर्डलेस फोन आ गया हमारी जिंदगी में। मतलब बड़ा वियर्ड था हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट कि फोन चल भी रहा है लेकिन कोई तार नहीं है, कोई कुर्सी से जुड़ाव नहीं है और हाथों में पकड़े हुए आप घर में इसको कहीं पर भी लेकर घूम फिर सकते हो, किसी भी कोने में बैठ के बात कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ वो फोन वाला जो कॉर्नर है जहाँ पर एक टेबल, उसके ऊपर फोन, साथ में डायरेक्टरी और वो कॉन्टैक्ट्स वाली डायरी, वहीं बैठ के बात करने की जरूरत नहीं है। ना हमारे बड़ों को इस बात को लेकर हिचकिचाहट हुआ करती थी कि अच्छा अब हम गॉसिप कैसे करें या फलाना धमाका बात भरी महफिल में बैठ के कैसे करें, क्योंकि सामने आसपास काफी सारे लोग हुआ करते थे तो हर तरीके से हर कई सारी बातें जो है वो नहीं हुआ करती थी तुम्हारे बिना। लेकिन जब तुम आए तो माहौल बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, गॉसिप्स की संख्या बढ़ गई तुम्हारे आने से। मुझे याद है कैसे तुम्हारा बेस स्टेशन चार्जिंग पर लगा रहता था और हम सब बारी बारी तुम्हें इस्तेमाल किया करते थे। कॉलर आईडी देखकर हम बड़े एक्साइटमेंट में अंदाजा लगाया करते थे कि किसका फोन है, और अगर किसी अजनबी का होता था ना तो पूरा घर मिलकर इस बात का आइडिया लगा रहा होता था कि आखिर ये कॉल किसका है। और तुम्हारी वो रिंगटोन, उसकी तो एक अलग ही मिठास थी। ना आज के स्मार्टफोन्स जैसी तेज आवाज, ना नोटिफिकेशन की भरमार, तुम बस एक शांत सी घंटी बजाते थे और हम दौड़ पड़ते थे तुम्हें उठाने के लिए। तुम्हारे जरिए हमने रिश्तों को करीब से महसूस किया था। आज सब कुछ मोबाइल में सिमट गया है, तुम्हारी जगह अब स्मार्टफोन्स ने ले लिया, जो ज्यादा कर सकता है लेकिन वो अपनापन, वो सादगी, वो कामनेस, वो अब कहीं खो गई है। तुम थे तो किसी कॉल ड्रॉप की टेंशन नहीं हुआ करती थी, ना ही नेटवर्क सिग्नल की, और तुम्हारी बैटरी वो भी बड़ी लंबी चलती थी। तुम्हें पता है मैंने आज भी तुम्हें संभाल के रखा हुआ है, स्टोर रूम में कार्डबोर्ड के डब्बे में बंद हो तो आज ना तुम पे कोई बात करता है ना ही तुमसे कोई बात करता है। इसलिए सोचा कि क्यों ना आज तुम्हें चिट्ठी लिखी जाए और बताया जाए कि दुनिया कितनी ही बदल गई हो लेकिन हमारे लिए तुम्हारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। तुम्हें याद करती तुम्हारी चलती फिरती बोलती हुई सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: फाल्गुनी पाठक की आवाज में द सॉन्ग ओ पिया, ये गाना है कैसेट के साइड ए का चौथा गाना।
1: मिर्ची 90s कैसेट।
2: वैसे आपको एक सच बात बताऊं, ये गाना गाना नहीं है यार, ये गाना थेरेपी है। कानों में पड़ता है ना तो दिल को सुकून मिलता है, इतनी प्यारी म्यूजिक है इसकी, ऊपर से फाल्गुनी पाठक की आवाज। और अगर इसका वीडियो देखा जाए ना तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और प्यारा। इनफैक्ट हम कजिन्स का तो गर्मियों की छुट्टियों में ये वीडियो एक्चुअली पॉइंट ऑफ डिस्कशन हुआ करता था कि जो लड़की इस गाने में है वो कितनी क्यूट लगती है। एंड देन वो चांद जो कि एक्सप्रेशंस दिखाता हुआ दोनों की लव स्टोरी का गवाह बनता जा रहा है आसमान में बैठा बैठा। ओह माय गॉड, एकदम ही हटके कॉन्सेप्ट था इस गाने का सीरियसली, जो कि डेफिनेटली आज के टाइम पर तो नहीं चलेगा, बिकॉज आज इतना रियलिस्टिक हो गए ना हम लोग कि इमेजिनेशन को हम रियलिटी के साथ कंपेयर कर करके उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर चांद इस गाने में अपना एक्सप्रेशन दे रहा है ना तो वो भी एक खूबसूरत चीज है। अब लॉजिक क्या लगाना यार कि चांद कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकता या चांद की कोई शक्ल नहीं होती। अरे देखना चाहो ना तो आप चांद में न जाने क्या क्या ढूंढ सकते हो यार, लेकिन उसके लिए आपको मोहब्बत में पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो इस गाने की मोहब्बत में पढ़ते हुए ये गाना मैं आपके लिए चलाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप मुझे यहाँ के अलावा मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 1980 में ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी की सारी लाइमलाइट लेकर चली गई थी रेखा।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप,
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इस शादी में रेखा की जो एंट्री हुई थी वो बॉलीवुड के मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक है। रेखा आई थी व्हाइट साड़ी पहन के, बड़ी सी लाल बिंदी उन्होंने लगाई हुई थी और माथे में सिंदूर। उस टाइम उनके और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप के रूमर्स ऑलरेडी थे, तो सब लोग उनकी तरफ, सारे कैमराज उनकी तरफ देख रहे हैं। वो वेडिंग रिसेप्शन में आई आरके स्टूडियोज में, जहाँ ये हो रही थी गार्डन वगैरह में, और आके शी वॉज लुकिंग फॉर अमिताभ बच्चन। और वो अमिताभ बच्चन तब मनमोहन देसाई साहब से बात कर रहे थे, वो उनके पास गई, उनको हेलो वेलो किया, इतनी सी ही बात हुई। उसके बाद ऐसा भी सुनने में आता है कि थोड़ी देर बाद जया बच्चन जो वहाँ मौजूद थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत साल बाद रेखा ने इस बात में क्लैरिटी दी कि वो किसी फिल्म की शूटिंग से आ रही थी और डायरेक्टली वो आ गई थी, तो ये सारा कुछ सीन हुआ था। फिलहाल सीन थोड़े म्यूजिक का पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: पुरानी जींस विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.
0: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

ये लेट 40s की बात है जब एक बार लता मंगेशकर जी एक स्टूडियो जा रही थी एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लता जी ने लोकल ट्रेन ली, उन्होंने देखा कि उनके कंपार्टमेंट में एक लड़का भी उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। वो ट्रेन से उतरी, वो लड़का भी उनके पीछे पीछे उतरा। लता जी ने एक टांगा लिया स्टूडियो जाने के लिए, उस लड़के ने भी एक टांगा लिया, वो टांगा उनके टांगे के पीछे पीछे चलता रहा। लता जी का टांगा स्टूडियो पे रुका, वो वहाँ पे उतरी, वो लड़का भी वहाँ पे उतरा। लता जी घबरा के अंदर गई तो पता चला कि वो लड़का तो अशोक कुमार का भाई किशोर कुमार था जो उनके साथ गाना रिकॉर्ड करने आया था। ये थी इन दोनों की पहली मुलाकात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: इंडियन सिनेमा की मास्टरपीसेस फिल्मों में से एक है गाइड। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाइड बनाने का ख्याल कैसे आया था, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में देवानंद साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पर्ल बक, नोबेल लॉरियट, जिसने किताबें लिखी जैसे गुड अर्थ, वो इंडिया में आई, उन्होंने पिक्चर बनानी चाहिए हिंदुस्तानी एक्टर्स के साथ, सबसे मुलाकात की, हमसे भी मुलाकात की, हम कुछ क्लिक हो गए कि देव साहब आपके साथ फिल्म बनाते हैं, क्योंकि देखो भैया हम इतने बड़े स्टार्स हैं कि अगर हमें बाहर काम करना पड़े किसी बाहर के मुल्क में, तो जब तक हमारा सेंट्रल रोल नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। फिर तो मुझे किसी ने कहा कि गाइड पढ़ो, जो गाइड का रोल है देव साहब वो अपने भाई इंटरनेशनली बनाइए। मैंने गाइड को पढ़ा, मुझे लगा कि गाइड का ही कैरेक्टर इंटरनेशनली बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा जो हम पोर्ट्रे करना चाहेंगे। मैंने पर्ल बक अमेरिका में फ़ोन किया है, मेरे पास एक किताब है गाइड, अगर आप उसको पढ़ लें तो अगर आपके मन चाहे तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो उन्होंने कहा गाइड तो हमने पढ़ा है, तो मैंने कहा उसको बताइए आगे कैसे बढ़ें, कहा आप अमेरिका आ जाओ, तो मैं अमेरिका पहुंच गया, उनके जाके बातचीत हुई, हम क्लिक हो गए।
0: वैसे मैंने लाइफ में पहली बार देवानंद साहब को पता है कब देखा था, गाइड फिल्म में ही, बिकॉज मेरे फादर ये फिल्म बहुत देखते थे। छोटे होते ये फिल्म बड़ी बोरिंग लगती थी, लेकिन फिर जब बड़े हो गए दोबारा देखी तब समझ में आया कैसे ये फिल्म वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

वही सिंगर शब्बीर कुमार को जब लता मंगेशकर जी के साथ गाने का मौका मिला तो शब्बीर कुमार जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अक्सर कई सिंगर्स का यही हाल होता था जब उनको लता जी के साथ पहली बार गाने का मौका मिलता था, तो ये जब रिकॉर्डिंग करने गए वहाँ पे इनकी बोलती बंद हो गई या सिंगिंग बंद हो गई, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग चल रही थी आरडी बर्मन इनको क्यूज दे रहे थे कि अब म्यूजिक खत्म हो गया, अब तुम्हारी वोकल्स की बारी है, सिंगिंग की बारी है, लेकिन ये गा ही नहीं पाए। तब लता जी ने एक ब्रेक लेने को कहा, वो इनके साथ बैठी, इनके लिए चाय वाय कुछ नाश्ता मंगाया, कुछ टाइम स्पेंड किया, उनको कंफर्टेबल किया, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हुई। ये गाने थे बेताब फिल्म के, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची। आइकॉनिक सिंगर के येसुदास का हिंदी फिल्म डेब्यू हुआ था इस गाने से जो हम अभी सुनने वाले हैं। 1976 की फिल्म चितचोर, इसका ये ब्यूटीफुल गाना कंपोज्ड एंड रिटन बाय रविंद्र जैन, और येसुदास जी को इस गाने के लिए उस साल नेशनल अवार्ड भी मिला था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: Mirchi, it's hot.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf mirchi par.

आपने लाइफ में प्यार किए या मूवी नहीं देखी है ना, तो अपने आप पे एहसान करो, ये फिल्म देख लो प्लीज। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैंने ना ये फिल्म बिट्स एंड पीसेस में देखी थी रिसेंटली, मैंने पूरी देखी एंड व्हाट अ फन फिल्म टू वॉच। एक तो देखो इसमें वो आइकॉनिक सीन है, कॉमेडी सीन, जिसमें महमूद जी एज सन, ओम प्रकाश जी एज फादर को एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहे होते हैं। बाय द वे, अंदाज अपना अपना में जो महमूद जी की वाह वाह प्रोडक्शंस है, वो नाम इसी फिल्म से आया है। एक और चीज इस फिल्म से आई है, 90s की फिल्म हसीना मान जाएगी में जो गोविंदा संजय दत्त के चाचा बन के लड़की के बाप से मिलने नहीं जाते, वो यार वो चाचा वाला जो किरदार है वो भी इसी फिल्म से आया है, प्यार किए जा से, जहाँ पे किशोर कुमार जो शशि कपूर के दोस्त होते हैं वो शशि कपूर के फादर बन के जाते हैं। व्हाट कॉमेडी, प्लीज डू वॉच। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है एक्ट्रेस नूतन को उनकी मदर जो खुद एक एक्ट्रेस फिल्म मेकर थी शोभना समर्थ जी, उन्होंने अर्ली 50s में जब नूतन जी फिल्म इंडस्ट्री में अपने

0: शुरुआत ही कर रही थी, उनको एक साल के लिए स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल में भेजा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो इसीलिए कि एक्ट्रेस बनने के लिए उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रेस, वो निखार आ जाए। उनकी यंगर सिस्टर तनुजा जी को भी स्विट्जरलैंड भेजा गया था, लेकिन फिनिशिंग स्कूल में नहीं। इनफैक्ट एक्ट्रेस बनने के बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई वेंट टू रेगुलर इंग्लिश स्कूल क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस का बड़ा शौक था और मुझे डिप्लोमेटिक सर्विस में जाना था। सो दे थॉट दैट इफ आई वेंट टू अ स्कूल इन स्विट्जरलैंड इट वुड बी बेटर फॉर मी, आई वुड हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू माय लैंग्वेजेस एंड गो इनटू द डिप्लोमेटिक फील्ड एंड आई वाज गोइंग टू कम बैक एंड डू माय आईएफएस एटसेट्रा एटसेट्रा। डिड नॉट हैपन एंड आई केम बैक बिकॉज वी हैड अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फैमिली एंड द ओनली प्रोफेशन दैट आई कुड थिंक ऑफ डूइंग and which my mother thought would be easy for me to do was this and we needed the money so
0: bhai as a child actor to tanuja ji ne ek do filmon mein kaam kiya tha lekin unke career ki shuruaat as main lead hui thi 1961 mein with a film called hamari yaad aayegi purani jeans par main hu charu aapke sath aap sun rahe hain mirchi।

0: प्रेम चोपड़ा साहब स्क्रीन पे जिस तरह के रोल्स करते थे, काफी लोग उनसे डरते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वो किस चीज से डरते थे, सुनिए एक बार सपनी नाम की एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग करते हुए क्या इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: तो उन्होंने साहब मुझे स्कर्ट कहा कि देखिए अब ये शॉट रेडी है, शॉट ये है कि आप सपेरे हैं, ये पटारी देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ, इसके अंदर सांप है। ये आपने पटारी को खोल के सांप को हाथ में उठाना और कहना है कि चल पुत्र बदला लेना अपना करके ऐसे फेंक देना। पहले तो ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा यार कि ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे अगर किसी चीज से डर है तो वो सांप से है। बचपन में कुछ होता ना, कुछ दहशत कर दी, दूध नहीं पियोगे तो सांप आ जाएगा कुछ ऐसा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है, खोलने की हिम्मत ही नहीं। अपनी पगड़ी जो थी फेंकी, ये फेंका। मैंने कहा मुझे ये काम ही नहीं करना, मैं भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो पहले बताना चाहिए, ये तो पिक्चर ही सांप होगी। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं करूंगा। तो ये सांप में कुछ नहीं होता, दांत वांत निकाले होते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे बड़ी उस क्रीपिंग फीलिंग आती है, आई कैन नॉट होल्ड इट। नहीं तो एक नकली सांप तो कर सकेंगे, मैं नकली सांप से। तो साहब उन्होंने फिर नकली सांप पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और सारी फिल्म जो है उसके साथ।
0: वैसे किसी फिल्म में उनका ऐसा डायलॉग भी था कि सांप से मैंने ये सीखा है कि जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं टस लेता हूँ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi, it's hot. Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

आपको पता है जब अभिमान फिल्म आई थी तो ऐसे रूमर्स भी आए थे कि ये फिल्म किशोर कुमार और उनकी फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा की लाइफ पे बेस्ड है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। तो किशोर कुमार की फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा बंगाली सिनेमा की एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस सिंगर डांसर थी। उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह ये थी कि किशोर कुमार चाहते थे कि वो एक होम मेकर बने, एक हाउस वाइफ बन के रहे, जबकि वो अपना करियर छोड़ना नहीं चाहती थी। वेल, अभिमान फिल्म में एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ का टैलेंट वॉज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द फिल्म। तो किशोर कुमार को जब ये बात की रूमर्स कहीं से पता चले, ऐसा सुनने में आता है हाँ कि इस फिल्म के दो सॉन्ग्स वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन जब उनको ये पता चला उन्होंने बाकी के गाने गाने से मना कर दिया। फिर बाद में दूसरे मेल सिंगर्स को उनकी जगह पे लाया गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

आपको पता है लिरिसिस्ट इंदिवर जब टीनेजर थे तो फ्रीडम फाइटर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लेट 30s अर्ली 40s की बात है जब उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वो देशभक्ति की कविताएं लिखते थे, रिसाइट करते थे और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें करीब 3 साल जेल में भी रखा था। वैसे पूर्व और पश्चिम फिल्म का भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, इंदिवर साहब ने तो लिखा है और उनकी रेंज एक्चुअली उसके लिए तो अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा। फिलहाल श्याम लाल बाबू राय जी, इंदिवर जी का ये रियल नेम है, उनका लिखा हुआ एक और गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: पहलवानी और म्यूजिक क्या ही तगड़ा और सुरीला कॉम्बो है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ऐसा ही कुछ कॉम्बो था सुरेश वाडकर जी के घर में। उनके पिताजी पहलवान भी थे, म्यूजिक भी सुनते थे। सुरेश वाडकर ने भी ऐसा किया, शुरुआत में थोड़ी पहलवानी भी की और फिर म्यूजिक में आ गए। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मेरे फादर कुश्ती करते थे, वो मट्टी वाली कुश्ती, बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां की है अपने जमाने में। उसका ही असर कहिए, कंपलसरी अखाड़े में तालीम में जाना पड़ता था ताकि सेहत ठीक रहे थोड़ी सी। मगर वो भी, पिताजी भी संगीत के बड़े शौकीन थे, भजन वगैरह गाते थे, तो छोटेपन में वो भी एक जो हमारे ऊपर असर रहा संगीत का, वो बचपन से ही, और उसकी वजह से सडनली मुझे गाते हुए सुना उन्होंने। 4 साल की उम्र थी मेरी, तो उनको कहीं से लगा कि इसको गाना सिखाना चाहिए, तो उस दिन से मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गई। 4 साल का होऊंगा
0: बस यहीं से शुरू होके लड़के ने फिर अपने म्यूजिक करियर में 4 चांद लगा दिए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.

ओए होए होए होए, लव इश्क प्यार मोहब्बत, फिर जी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। अर्ज किया है गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। एक और सुनिए, जिगर मुरादाबादी कहते हैं, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, अदना छोटा सा, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और एक सच्चा फिल्मची अभी थोड़ा सा तो ऑफेंड हो ही गया होगा कि ये क्या बोल रही है श्रुति यार, मतलब अब हम हॉलीवुड से सीखेंगे। हाँ भाई, सीखना पड़ेगा, सिर्फ कॉन्टेंट वाइज ही नहीं बट एक्चुअली प्रोफेशनैलिटी वाइज भी हमें सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस तरीके से रणवीर सिंह का डॉन 3 फॉल आउट चल रहा है, जिसके बाद से इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ, उनको बॉयकॉट करने की बात हो गई एंड वॉट नॉट, तो उससे ना मेरे दिमाग में आता है कि इट्स हाई टाइम कि बॉलीवुड हॉलीवुड के जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआत करे। मतलब ये जो होता है ना कि अच्छा ये एक्टर है, हमें इसको अपनी अगली फिल्म में लेना है, एंड बस वो हैंडशेक वाली डील हो जाती है दो लोगों के बीच में, उसके बाद फिर कोई बात पलटी भी तो आप कोई मेजर एक्शन नहीं ले सकते हैं किसी के खिलाफ। सो दैट इज द रीजन आई थिंक आई बिलीव दैट ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाली चीज है कि भाई अगर आपको मेरे इस फिल्म में काम करना है तो लेट्स साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होना हमारी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज वाई आई सेड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।

0: Mirchi. It's hot.
1: This is something special.

0: Mirchi, it's hot.
1: Bye.